WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: गार्डन?
1: वो यहीं पर।
2: यहीं है?
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वीडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: हरे रामा
2: ट्रायंगल आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन रालीदुरम रेडियो नायरा एंड चेरिश्ड मोमेंट्स प्राउडली प्रेजेंट भजन क्लबिंग अ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल वेयर डिवोशन मीट्स द बीट एंड ब्रिंग्स जनरेशन टुगेदर. Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983. और ईमेल info@radionaira.com. भजन क्लबिंग वन रिदम वन हार्ट वन डिवाइन सेलिब्रेशन. Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: था कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉनवेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

यार जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 41490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो नमस्कार, आदाब, वड़कम एंड किम छो टू एवरीबडी. सो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा एंड यू कैन ट्यून इन 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम या 1490 एएम पर भी आप सुन सकते हैं, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595. तो हर सैटरडे की तरह हम एक बार फिर आ चुके हैं आपके अपने शो पर, जहाँ पे हम करते हैं दिल से देसी बातें, राइट? तो वी टॉक अबाउट इश्यूज, वी टॉक अबाउट गुड यू नो टॉपिक्स टू चूज फ्रॉम, और खूब दिलचस्प टॉपिक होते हैं हमारे, राइट, इस शो पे. एंड आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक, सो पीपल आर लाइकिंग इट. एंड यू नो इट्स अभी मैं थोड़े टॉपिक से रन आउट हो रहा हूँ, सो होपफुली इफ यू हैव एनी ओपिनियंस और सजेशंस, फील फ्री टू सेंड इट माय वे, और यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट विद नायरा फॉर इट. तो आज है सैटरडे, ऑलमोस्ट सितंबर शुरू हो चुका है, कल थी कृष्ण जन्माष्टमी, सो आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है. फॉर दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, you know, I hope you enjoyed last night, Krishna Janam, and all of these good events happening all across in the area. तो चलिए आज सीधा मुद्दे पे बात करते हैं, राइट? आज का टॉपिक अगेन वंस अगेन थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, और अगर आपके घर में भी कोई टीनेजर है, या कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा है, या कोई बच्चा एलिमेंट्री में भी जा रहा है, राइट, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है, राइट? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो इसे मिस मत कीजिएगा. Or if you get a chance to listen to it on a repeated or recorded one, definitely listen to the whole show. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, राइट? तो बात करेंगे हमारे बच्चों को जब हम यू नो को अभी जो कॉलेज जाने वाले हैं, राइट, और क्या उन्हें कॉलेज जाना चाहिए, लाइक डेट फ्री, एक नया अमेरिकन ड्रीम जो कॉलेज जाके लोग अचीव करते थे, जो लोग बाहर से आते हैं स्पेशल यूएस एजुकेशन लेने के लिए. तो लाइक यू नो इज इट स्टिल वर्थ इट, इज स्टिल रेलेवेंट, और तो उसी के बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, राइट? कि अब मैं जानता हूँ, राइट, हमारी कम्युनिटी में बहुत से सवाल पूछते हैं कि लाइक भाई कि मैंने कोई यू नो ये सवाल पूछना ही गुनाह जैसा लगता है कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, कॉलेज जाना है नहीं जाना, ये कैसा टॉपिक है, राइट? क्योंकि हम जिस घरों में बड़े हुए हैं, जो सिचुएशंस में बड़े हुए हैं, जो एरा में बड़े हुए हैं, वहाँ एक ही फार्मूला था कि लाइक भाई पढ़ो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो, घर खरीदो, रिटायर हो, फिर यू नो हरिओम या ओम शांति या रेस्ट इन पीस का मैसेज आ जाता है बाद में, राइट? इट्स वेरी सिंपल, एक पैथवे बन चुका है, राइट? एंड विच इज ट्रू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? लेकिन दोस्तों, लाइक यू नो सच ये है कि जो दुनिया में यू नो हम दाखिल हो रहे हैं, जहां पे हम वी आर मूविंग इनटू द एरा, राइट, जहां पे वो दुनिया वो नहीं रही जहां से हम आए हैं, राइट? ये एआई का जमाना आ रहा है, कॉलेज का खर्चा जो है आसमान को छू रहा है. इफ यू लुक एट इट, लाइक कॉलेज फीस आर सो एक्सपेंसिव, और बहुत सारी कंपनीज अब यू नो डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की तरफ ध्यान दे रही है, राइट? तो देयर आर टन्स ऑफ जॉब्स. यस, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि ये पूरा एक सीलिंग ब्रेक हो चुका है अभी, मगर फिर भी एक सोचने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी ही ज़रूरी है इसके ऊपर, और क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट? तो आज हम यही यू नो बात करेंगे कॉलेज की डिग्री के बारे में, कि या कॉलेज बेकार है, या ये भी यू नो कुछ हर बच्चों के लिए कॉलेज किसे जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए. तो इसे यू नो दैट्स द क्वेश्चन वी आर गोना आस्क, राइट, कि भाई कौन से बच्चे के लिए कॉलेज सही है, कौन से को नहीं, और कौन से पेरेंट्स को कैसे डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे में. तो अगर आप घर में कभी ये लाइन सुनते होंगे कि लाइक बेटा इंजीनियरिंग कर लो, फिर अगर यू नो बेटा नाम बोले तो चलो कंप्यूटर साइंस कर लो, चलो ये भी ना बोले तो MBBS ट्राई कर लो, तो आज हम ये थोड़ी सी सोच को यू नो हिचकिचाएंगे, कि देखेंगे कि क्या है, राइट, और प्यार से और यू नो क्वेश्चन करेंगे अपने आप को कि लाइक भाई ये अब कितना रेलेवेंट रहेगा, जहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब से आप कुछ सीख सकते हो, यूडेमी या कोई भी ऐसी साइट से आप पूरे के पूरे कोडिंग और ये सब स्किल सेट सीख सकते हो, विच इज़ नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. मैं बोलूँगा कि लाइक $1,000 भी अगर आप इन्वेस्ट कर लो कंपेयर टू 100,000 तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है एंड देयर आर गुड अमाउंट ऑफ पीपल हु आर मूविंग टुवर्ड्स दिस. तो इसके ऊपर आप थोड़ी बातें करेंगे. चलिए पहले गाना वाना सुनिए, थोड़ा यू नो मूड फ्रेश करते हैं, देन वी विल कम बैक एंड विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. तो गाने हो जाए, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, होप के गाने वाने पसंद आ रहे हैं। आज मैंने थोड़ी प्लेलिस्ट भी बड़ी जोरदार रखी है, तो आई होप यू गैस आर एंजॉयिंग इट। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉलेज डिग्री की, राइट? तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन ऑन रेडियो नायरा। हम हर शनिवार मिलते हैं और ऐसे ही कोई ना कोई टॉपिक को छेड़ते रहते हैं। तो इतना कुछ चल रहा है कि भाई एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि भाई डिग्री तो लेना ही पड़ेगा। अब हर बच्चा वैसा होता नहीं कि भाई वो कॉलेज जाके ही विल बी अ ब्राइट शाइनिंग स्टार। कितनी मूवियाँ बन चुकी हैं इन चीज़ों के ऊपर, पर अभी ज़माना भी ऐसा चेंज हो रहा है कि भाई कॉलेज की फ़ीस और उसका डेट इतना ज़्यादा है। और अगर आप सोचें तो लोग, बहुत से लोग यहाँ पे अब माइग्रेंट भी हैं और वो मूव हुए हैं, उनके पास जॉब्स की इनसिक्योरिटी है, सब चीज़ें, ऊपर से बच्चे कॉलेज की जाने पे हो चुके हैं, तो वो क्या करें, राइट? सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि भाई चलो, इफ़ योर सन इज़ बॉर्न हियर, यू हैव अ लॉन्ग रन वे, तो आप चलो कुछ कॉलेज के लिए बचा भी सकते हैं। मगर वो ना हो तो देन यू आर फोर्स इन टू अ डेट। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय लोन लेके बच्चे को पढ़ाने का। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई हाई स्कूल तक तो चलो कोई फीस कोई स्ट्रेस नहीं होता, मगर फिर देन यू हैव टू डू इट। तो पहले अपनी खुद की हम सोच समझते हैं, राइट? कि भाई हमारी पूरी ज़िंदगी में हमने सोचा इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, यही सब है, राइट? विच इज़ ट्रू, दिस नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं कभी भी पूरे शो में ये नहीं कहूँगा कि भाई कॉलेज मत जाइए यार, अगर डिग्री मत लीजिए। बट ऑल्टरनेटिव्स क्या है और कैसे ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है और कैसे ये माहौल पूरा चेंज हो रहा है, जब आप कभी ये भी सुनते हैं एलन मस्क जैसे बंदों से कि भाई 5-10 साल में आपका पैसा ही रिलेवेंट हो जाएगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, राइट? और फिर उसके साथ में हम कॉलेज सेविंग फंड्स जमा कर रहे हैं 529 और कितने हैं वो जो बने हुए हैं, राइट? तो उसकी क्या है, तो हम ये बातें करेंगे क्या, क्योंकि बच्चों के बात करने से पहले हम अपनी खुद की बात करते हैं कि हमारे इंडियन फैमिली में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो सिक्योरिटी होती है, एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, फैमिली की इज्जत बन जाती है, और कभी कभी ये हमारी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी डायरेक्टली बन जाती है कि अगर अनसर्टन कुछ हो जाए तो आपका फ्यूचर आपकी पढ़ाई है। एंड आई एम द परफेक्ट यूज़ केस फॉर दैट कि भाई पढ़ाई में सबसे जो निकम्मा हो सकता है वो मैं था। कभी दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे कि भाई मैं ये सब कुछ करूँगा, बट देन मीन्स यू गॉट अ कॉलेज डिग्री, इट चेंज एवरीथिंग फॉर मी, राइट? कि भाई इट चेंज माई होल करियर पाथ, क्योंकि पहले आई वॉज इन रिटेल एंड ऑल अदर थिंग्स, इन द मिनट आई गॉट दैट एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू गेट इन, बट दिस होल IT वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली चेंज थिंग्स फॉर मी। तो ऐसा भी नहीं है, राइट? कि आई एम ट्राइंग टू बैलेंस द होल एक्ट, कि भाई किसी को पूरे शो में ये ना लगे कि यार ये रेडियो पे आके ये लोगों को कह रहा है कि कॉलेज की डिग्री मत लीजिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, राइट? तो सोचिए, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सॉफ्टवेयर बन जाओ, सरकारी नौकरी ले लो, ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं, राइट? क्यों हमारे पेरेंट्स जिस दुनिया में से आए हैं वहाँ प्रोफेशनल डिग्री सीधा इकोनॉमिक स्टेटस बन जाती थी, क्योंकि बैक इन द डेज दे डू नॉट यूज टू हैव एनी अदर वेज एंड मीन्स टू लिफ्ट द फैमिलीज, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, राइट? एजुकेशन ने लाखों इंडियन फैमिलीज की जिंदगी में बदली है, और प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम ये कन्फ्यूज कर देते हैं कि भाई पढ़ाई जरूरी है का मतलब है कि 4 साल की कॉलेज की डिग्री जरूरी है, या ये दो चीज़ें अलग है कि भाई आपको पढ़ाई भी ज़रूरी है मगर ये नहीं कि आपको कॉलेज की डिग्री भी ज़रूरी है। ये अब सवाल उठ चुका है कि भाई आगे जाके क्या होगा, एंड व्हाट डू यू वांट टू लाइक डू, राइट? डू यू वांट टू, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर इट, व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर यू? तो एक छोटा सा सीन सोचिए, राइट? कि दो बच्चे हैं, एक को बायोलॉजी करनी है, पसंद है, और दूसरे को हाथ से चीज़ें बनाना, रिपेयर एंड ऑल दीज थिंग्स, गाड़ी ठीक करना, वायरिंग समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पसंद है, राइट? कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो पहले वाले को क्या चाहिए, राइट? मेडिकल डिग्री कॉलेज की चाहिए। दूसरे को मे बी सलॉन ट्रेनिंग और कार की ट्रेनिंग, या इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट, या जनरल कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट। दूसरे तो दूसरे को शायद ये खाली अप्रेंटिसशिप, टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेशन, ये चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप सोचिए कि आज के टाइम पे यू गो फाइंड अ हैंडीमैन, और यू गो फाइंड अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर, यू गो फाइंड एन इलेक्ट्रिशियन, यू गो फाइंड अ प्लम्बर, राइट? इसकी कितनी डिमांड है अभी इस टाइम पे कि भाई ऐसा ही नहीं रहेगा कि भाई कि अगर आप कॉलेज में हैं तो ही आप ये बायोलॉजी की डिग्री लीजिए या डॉक्टर बनिए तो ही आप आगे बढ़ेंगे।
एक सिंपल का, एक सिंपल सा आपको यू नो वो क्या बोलते हैं कि वो प्लम्बिंग के वो सिंक के नीचे क्या ग्राइंडर होता है कुछ, वो $75 का आता है, मगर आपको लगवाना है तो उसको फिटिंग चार्जेस $300 है। तो ये भी एक चीज़ है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि भाई यू नो क्या है, लेकिन ये क्या होता है, राइट, पेरेंट्स दोनों को बोलते हैं कि नहीं नहीं बोथ वॉन्ट्स टू डू टू डिफरेंट थिंग्स, बट पेरेंट्स आर सेइंग नहीं नहीं दोनों को बैचलर्स डिग्री करनी ही पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि रास्ते में समाज है, उसमें इज्जत है, दूसरी वाली फर्स्ट जॉब में यू नो दूसरे में जो सेकंड जॉब है जिसमें लेबर वर्क है उसमें इज्जत नहीं है, राइट, दैट इज़ द स्टिग्मा वी हैव, दैट इज़ द टैबू वी हैव इन आवर कम्युनिटी के भाई ये सोच बन चुकी है, विच इज़ नीडेड टू बी चेंज्ड, बिकॉज के भाई जो अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, राइट, अगर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल है या आईटी प्रोफेशनल है, वो सिर्फ आपकी एक जनरेशन तक है, बट अगर आप कोई जनरल कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कुछ बन के आप बिजनेस खोलते हैं तो वो जनरेशनल वेल्थ बनती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू थिंक अबाउट कि भाई एक तो आप कर्जा लेके डिग्री ले रहे हैं और दूसरे में कम पैसे में आप कुछ स्किल सीख रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एंड देन यू कैन एक्सपेंड एंड यू कैन सेल एंड यू कैन डू वंडर्स, राइट। तो ऐसा ये एक चीज़ नहीं रह चुकी है, बट लेट्स लुक एट द फैक्ट्स, राइट, कि भाई पढ़ाई और कमाई का रिश्ता क्या है, राइट, कि भाई ऑफकोर्स इसके पीछे प्री कंसीव्ड नोशन है, क्यों है, क्योंकि बहुत सारी थियोरीज है इसके पीछे, राइट। तो हाई स्कूल डिप्लोमा कोई कॉलेज नहीं, अगर एवरेज जाते हैं तो आपका $996 पर वीक का खर्चा है, लगभग लाइक यू नो 5,000-50,200 एक साल का खर्चा है अगर आपको कुछ ऐसे हाई स्कूल डिप्लोमा ऐसा कुछ करना है। कुछ कॉलेज या एसोसिएट डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो 1,097 पर वीक का खर्चा है आपका, लगभग 57,050 से बन जाता है। अगर आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो $1,754 पर वीक बनता है, ये US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स 2025 का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। तो लगभग $91,000 सालाना, मतलब एक साल का, आप सोचिए चार साल में आप बड़ी मच $2,250,000 के अंदर आपका कॉलेज डिग्री आपके हाथ में आएगी, राइट। तो सीधा अगर आप देखते हैं कि भाई इनकम क्या है, खर्चा जो बनता है उसके साथ में, ऑफ कोर्स आपकी इनकम भी ज़्यादा है उसके साथ में। तो इफ़ यू आर अ कॉलेज एंड हाई स्कूल डिप्लोमा तो आपको इतना ज़्यादा अभी वो गेटवे टू एंट्रीज इन जॉब्स नहीं है, मगर जैसे ही आप हायर द लैडर पहुँचते हैं बैचलर्स डिग्री के तो आपको जॉब्स भी वैसे हाथ में आती है, एंड देन यू काइंड ऑफ यू नो स्ट्रगल थ्रू फॉर कपल ईयर्स एंड यू गेट सेटल डाउन। सो ऑफ कोर्स द मनी व्हिच यू इन्वेस्टिंग यू गेट बैक, बट इट टेक्स टाइम। पर ये दोनों तो ये यू नो इट्स वेरी क्लियर कि डिग्री वालों की एवरेज कमाई ज़्यादा है, राइट, इस टाइम पे, अब की बात मैं कर रहा हूँ, पर मैं ये पूछूंगा नहीं कि लाइक यू नो बिकॉज दैट्स वेरी गिवन, लाइक कॉलेज एंटी होना भी बहुत गलत है, लेकिन एवरेज के पीछे एक छोटी सी ट्रिक होती है कि ये एवरेजेस में बहुत वेरिएशन छुपाए जाते हैं। एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की और एक आर्ट डिग्री ग्रेजुएट की सेम डिग्री कैटेगरी में नहीं आता, राइट, क्योंकि देर आर टू डिफरेंट स्किल सेट्स और ये दोनों ही अलग लोग हैं। एक स्टूडेंट जो डेट फ्री ग्रेजुएट हो रहा है और एक जो 100,000 के का खर्चा लेकर या उधार करके आ रहा है, वो दोनों की जिंदगी भी डिफरेंट होगी, बिकॉज वन इज़ लाइक डेट फ्री, ही इज़ लाइक अ फ्री बर्ड, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, नदर वन इज़ लाइक यू आप जकड़े हो उसके ऊपर, और फिर आपके ऊपर और खर्चे आएंगे घर के एंड ऑल दीज थिंग्स एंड शादी वादी एंड ऑल दैट, उसके ऊपर हमने बात की है, राइट। तो सवाल ये नहीं है कि भाई कॉलेज इज वर्थ और नॉट, सवाल ये है कि ये डिग्री, ये जो कॉलेज इस प्राइस पर ये डिग्री ले रहे हैं, क्या

ऑल्सो ये भी एक चीज है। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि भाई आपको किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज समथिंग व्हिच यू वांट टू थिंक अबाउट, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स एआई। अगर डिग्री इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी सब कुछ है, तो फिर वाई आर द पीपल हु हैव डिग्रीज आर द मोस्ट अनसिक्योर्ड एट दिस टाइम, कि उन्हीं पे सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा आ रहा है। जो जो डेवलपर मास था, आई स्टिल रिमेंबर इट्स एन आई टी इज एन एवर ग्रीन फील्ड कहा जाता था, कि भाई कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी तो एवर ग्रीन है, जॉब्स कभी नहीं जाएंगी ये वो, पर अभी सबसे ज़्यादा खतरा डेवलपर्स को है, बिकॉज द एआई इज राइटिंग द कोड। सो व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दैट, राइट? तो सोचिए जरा इसके बारे में, थोड़े गाने वाने सुनिए, फिर हम इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे, एंड देन यू नो विल कम टू सम कंक्लूजन एट द एंड, और आप अपना खुद का कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकेंगे इसके साथ में, कि भाई व्हाट डू यू रियली थिंक, इज इट वर्थ गोइंग फॉर अ कॉलेज डिग्री और नॉट।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन ऑन रेडियो नायरा। यू कैन ट्यून इन 99.9 FM HD4, 101.9 FM और इधर 1490 AM। तो आज का टॉपिक थोड़ा दिलचस्प है और हम बात कर रहे हैं कि भाई यू नो कॉलेज की डिग्री और बच्चों की कॉलेज के लिए सेव करना। अगर आपके बच्चों को जाने के लिए अभी काफ़ी साल बाकी है, अगर आपके घर में कोई है जो जा रहे हैं राइट, और वहाँ पे डिबेट चल रही है कि भाई क्या करें, इज द मनी वर्थ और नॉट राइट, देयर इज अनदर एंगल अबाउट दिस, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड चलाते हैं कि कितना महंगा कॉस्ट है उसको जानते हैं राइट। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलेंगे, इतना महंगा राइट। आप लोगों को एक चीज़ का नाम दूंगा और आप अपने दिल में गैस कीजिए, या रियल नंबर्स नहीं बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा, तो आप सोचिए कि भाई यू नो इस चीज़ का क्या आंसर हो सकता है राइट। तो नंबर वन राइट, लेट्स बिगिन। सो नॉर्थ कैरोलिना जैसे स्टेट में एक पब्लिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में 4 साल का एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जिसमें ट्यूशन है, हॉस्टल है, खाना है, सब मिला के राइट कितना होगा, आप सोचिए। आई गिव यू 3 ऑप्शंस लाइक 60,000, 110,000 या 160,000 प्लस। अगेन दिस इज एन एवरेज राइट, बहुत सारी डिग्रीज हैं वो तो आसमान छूती हैं प्राइसेस के ऊपर में, ऑन डिपेंड्स अगेन व्हाट प्रोग्राम यू आर गोइंग फॉर राइट, बट स्टिल आप गेस कीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। 4 साल की अगर आपको डिग्री लेनी है उसका एवरेज कॉस्ट क्या होगा, 60,000, 110,000 या 160,000 प्लस राइट। तो जवाब जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आंसर इज सी राइट। एजुकेशन डेटा इनिशिएटिव के 2025 के डेटा के मुताबिक अगर सर्वे के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 साल का पब्लिक इन स्टेट डिग्री का एवरेज कॉस्ट है लगभग 160,000 प्लस राइट। और एरिया और स्कूल के हिसाब से और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एवरेज जो आता है तो वो पहुंचता है 230,000 तक पहुंच जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाकर रहना पड़ता है। और एक बार मैंने सुना है कि अगर बच्चे कॉलेज जाते हैं तो घर वापस आते ही नहीं, तो उसका डॉर्म का, खाने का, रहने का, पीने का, सब $2.5 लाख सिर्फ आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं 4 साल के अंदर। और उसके बाद में यू नो डिपेंड्स हाउ द चाइल्ड इज, व्हाट द डिग्री इज, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। और 4 साल के बाद में AI कहाँ पे पहुंचा होगा वो एक यू नो एक शैतान लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई क्या होगा उस टाइम पे 4 साल बाद। तो दैट्स व्हाई यू वांट आई वांट टू रियली टॉक अबाउट दिस राइट, कि एक एवरेज जो स्टूडेंट लोन लेता है ग्रेजुएशन के टाइम पे राइट, जो उसका एवरेज खर्चा कितना होता है राइट, दैट्स द सेकेंड क्वेश्चन। 15,000, 39,000 या 80,000, सोचिए लाइक अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट जो लोन ले रहे हैं उनका ग्रेजुएशन के टाइम पे कितना आपका लोन है राइट। तो उसका जवाब है बी राइट, फेडरल स्टूडेंट एड के मुताबिक 2025 का डेटा है ये, एवरेज फेडरल स्टूडेंट लोन बैलेंस पर बोरोवर लगभग 39,000 और प्राइवेट लोन्स जोड़ने पर ये 43,000 तक पहुंच जाता है। और जस्ट सो यू नो स्टूडेंट लोन इज अ लोन विच यू हैव टू पे, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है कि भाई डिलिंक्वेंसी कर लो या ये कर लो या वो हो जाएगा या वेव ऑफ हो जाएगा, अनलेस गवर्नमेंट पासेस समथिंग देर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट यू कैन एस्केप दिस लोन। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन इफ यू गेट मैरिड एंड समथिंग हैपन्स टू यू, इवन योर पेरेंट्स और स्पाउस, समबडी हैज़ टू पे दिस लोन, देर इज नो वे यू कैन वेव इट ऑफ। मैंने सुना है जितना मुझे पता है, मे बी आई मेट बी रॉन्ग इन दिस, बट मैंने सुना है ये राइट। राउंड थ्री, अमेरिका में टोटल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट लोन डेट सभी बोरोवर्स को मिला के कितना है, 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन या 1.8 ट्रिलियन, मतलब सारे बच्चों ने जो लोन ले रखा है US में उसका टोटल क्या है इस टाइम पे राइट। तो सही जवाब ऑफ कोर्स यू नो लोन नंबर चल रहा है सी, फेडरल रिजर्व के Q4 2025 के डेटा के मुताबिक टोटल स्टूडेंट डेट जो है वो 1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो ये मॉर्गेज के बाद सबसे बड़ी कंज्यूमर डेट इंडस्ट्री है, लाइक क्रेडिट कार्ड और ये सब तो अलग है, बट अमेरिका में स्टूडेंट लोन इज द सेकेंड बिगेस्ट डेट इंडस्ट्री आफ्टर द मॉर्गेज इंडस्ट्री राइट। तो सोचिए, तो ये नंबर सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये रियलिटी है जो आपके बच्चों के लिए भी वेट कर रही है। और अगर सोच समझ के अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो यू विल बी वन ऑफ देम,
And also, this is just, you know, a reminder, right? If you know that your child is going to be involved in, you know, college, yeah, kuch bhi ho, it is also important for you to start saving for this. Because aap ekdam se loan lenge and, you know, your child has to pay that. Aapka kya hota hai, kya nahi hota, that's a separate story, but your child is going towards a debt trap. Which is the reason why it's so important to start immediately some sort of a college saving plan as soon as the child is born. Even if you're contributing like a $50 or $100 a week or whatever, right? Or jitna bhi aap dal sakte hain, at least that money is going to grow over 18 years. That is the second reason I wanted to bring this topic up, right? Kyunki koi banda kahan se itna paisa layega, right? An average family, how are they going to pay for this? Of course, you get the loans and all that. But loan bhi aisa nahi hai ki you can just chill on the money and, you know, just relax on it. It's very difficult. So, chaliye gaane wane suniye, then we'll keep talking. We will add more. I'll keep going over this. And we'll be back in the show.

0: So viewers, I think we have, oh, listeners, not viewers, I'm sorry. I think we have a caller online. Kya aap mujhe sun pa rahe? Hello?
1: Are you? Sunai de raha
0: hai? Yes, kaun bol rahe hain?
1: Main Parag Dighe, HSNC se bol raha hun.
0: Oh, Parag bhai, kaise hain aap?
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैन?
0: बस बस बढ़िया बढ़िया। अब तो काफी कुछ चल रहा है, गणेश जी आ रहे हैं, बताइए आपने क्या बताना है और वी आर एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू।
1: एब्सोल्युटली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू रेडियो नायरा जो उन्होंने कॉल एक्सेप्ट किया और मुझे चांस दिया आपके लिसनर से बात करने का, एंड थैंक यू वैन फॉर डूइंग दिस। कल ही हम लोगों ने बड़े धूमधाम से HSNC में कृष्णा जन्माष्टमी बनाई। करीब करीब 3,000 लोग दिन भर में सुबह से लेकर के रात तक आए। बहुत सारे भजन गाए गए और सभी डिवोटीज को बहुत मजा आया। और ये एक्साइटमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है। हमारे गणपति बप्पा हमारे पास आ रहे हैं मंडे सितंबर 14th को। इस बार हर साल की तरह बड़े धूमधाम से गणेश फेस्टिवल मनाया जाएगा। 5:30 बजे से प्रतिष्ठापना पूजा शुरू होगी। एज यूजुअल वी विल बी डूइंग अ प्रोसेशन टेंपल से लेकर के हॉल तक। गणपति बप्पा को बड़े प्यार से हम लोग उनके आसन पे लेके जाए।
0: Yes. पराग जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक वी मिस्ड हिम। पराग भाई, आर यू देयर? हेलो हेलो, आई थिंक उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है या ही इज आउट इन द रेंज। बट येस, एज पराग भाई वॉज सेइंग राइट कि भाई गणेश जी आ रहे हैं, राइट? गणेश उत्सव इज कमिंग एंड आई एम टेक्सटिंग हिम, गिव मी वन सेकंड। पराग भाई, आर यू देयर? चलिए मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ। तो बेसिकली यू नो एज यूजुअल गणेश उत्सव इज वन ऑफ द मोस्ट डियरेस्ट एंड द फेस्टिवल वुड वी ऑल वेट फॉर इन HSNC। बहुत ही अच्छी तरीके से वो उत्सव मनाया जाता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके अंदर, जिसमें कि somehow पराग भाई, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, कैन यू हियर मी? I don't know, something is wrong with the line here. Parag bhai, are you able to hear me? Okay, he's able to hear me, but somehow aapki awaaz nahi aa rahi yahan pe. To jaise Parag ji bata rahe the, he's the president now of HSNC. He's been working around the clock. Jaise kal hum log wahan pe the, Krishna Janmashtami manayi gayi, और इतना ब्यूटीफुल तरीके से भजन हुए, कीर्तन हुए, और आज भी सारा दिन आप जाइए प्लीज़ दर्शन कीजिए। और गणेश उत्सव आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए, एंड देयर आर सम आर्टिस्ट कमिंग देयर। और गणेश जी का जो आगमन होगा ढोल नगारों के साथ में, इट इज़ द डिवाइन एक्सपीरियंस यू वांट एंजॉय, राइट? एक दिन भी मिस करने जैसा नहीं है। एवरी डे देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। शाम को महाप्रसाद होता है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। I was there for the last couple of years. It's the event we all wait for the whole year, and it is one of the biggest event in HSNC. So please, aap make sure कीजिए, आप उसे miss मत कीजिए. There are also lots of cultural programs happening with multiple different communities. So please make sure करिए. और उनके flyers भी हैं. For some reason, I don't know why. I'm missing out Parag bhai on the line, but I'll try to bring him back after I finish talking on this one. Hopefully he can rejoin us because he'll be able to explain a lot more details about kitne sare programs aur aa rahe hain. There are also tickets on sale available jahan pe aap jaake HSNC ki site se le sakte hain. Again, anything which you're doing is helping the community out, helping build the temple out. हम सबका एक ही गोल है कि यू नो टेंपल बड़ा बने और अच्छा बने और कैंपस डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव और ये त्योहारों में से टेंपल गेन्स अ लॉट ऑफ हेल्प एंड यू नो कम्युनिटी बॉन्डिंग। तो अगेन, गणेश जी का जो प्रोग्राम है वो यही है कि भाई हम सारे इकट्ठे हों, एन्जॉय करें, it doesn't matter where you belong from, right, in India, but it's for everyone. So please आइए. 10 दिन का प्रोग्राम होता है, सवेरे पूजा होती है और रात शाम को भी पूजा होती है. आई थिंक इज अराउंड 7:30. वहाँ पे फिर एक हवन भी होता है जिसमें लॉट्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट. फिर एक विसर्जन प्रोसेशन होता है. दिस ईयर ऑल्सो दे आर डूइंग सम ब्यूटिफुल डेकोरेशन विच आई विल नॉट रिवील, बट अगेन इट्स वर्थ लुकिंग एट इट. अगर आप न्यू मूव हुए हैं RTP में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल जिसको 19 साल हो चुके हैं होते हुए यहाँ पे. सो अगेन हम इसे धूमधाम से मनाते हैं. आप सब आइए, आप सब मनाइए. आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी इज ऑल्सो ब्रिंगिंग बापा एट होम. आई ट्राई टू ब्रिंग बैक पराग भाई इफ आई कैन ऑनलाइन सम हाउ. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू हियर हिम, बट होपफुली ही इज एबल टू हियर मी. बट वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट. अगर हो सके तो मैं एक पॉडकास्ट भी करूँगा इसके बारे में, पूरी हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, और यहाँ पे क्या क्या होता है गणेश फेस्टिवल में, जो 9 दिन, जो 10 दिन, जो 11 दिन जो होते हैं. और ये बार मेरे ख्याल से एक कुछ एंटरटेनिंग भी है यूथ के लिए. मेरे ख्याल से आई हैवंट रेड द फ्लायर येट, बट भजन जैमिंग भी होने वाला है. तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर यू जॉइन ऑल ऑफ दीज. और देर आर ऑल्सो आर्टिस्ट कमिंग, देर इज ऑल्सो शिंदोरी प्रोग्राम कमिंग. तो इसीलिए पराग भाई कुड हैव बीन एबल टू बेटर एक्सप्लेन यू दिस. Yes, I think I'm going to try to bring him back on the line at some point. Somehow, I don't know kya chal raha hai, kuch sunai nahi de raha wo jo bol rahe. But yes, it was all about Ganesh Chaturthi. Thode gaane wane suni, I'll try to bring him back online.

0: तो लिस्टनर्स, आई थिंक वी हैव पराग जी बैक। पराग जी, आप सुन पा रहे हैं?
1: आप मेरे को सुन पा रहे हैं?
0: यस, वी कैन हियर यू नाउ। सो बताइए, गणेश जी के बारे में बताइए, उत्सव के बारे में बताइए हमारे लिसनर्स को। वी आर एक्साइटेड टू हियर अबाउट इट।
1: एब्सोल्युटली। सो थैंक यू वैन। आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज मेरी आवाज आ नहीं पा रही थी, बट आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा जो आपने ऑलरेडी बता दी है। इस साल की कुछ स्पेशलिटी है वो ये है कि हम हर दिन, एवरी सिंगल डे ऑफ दिस 10-day फेस्टिवल, वी आर हैविंग अ यूनिक टाइप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ट्यूजडे 14th को तो गणपति बप्पा आ रहे हैं, उस दिन पूजा करेंगे, बिठाएंगे, महाप्रसाद होगा। 15 ट्यूजडे को हमारे सीनियर्स जो हैं, HSNC के सीनियर्स, वो एक बहुत ही अच्छा सुरीला गीत गुंजन प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम होगा शाम की आरती 7:30 बजे के बाद, तो 8 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा।
0: नाइस।
1: वेनसडे सितंबर 16th, बहुत ही स्पेशल टीम इंडिया से आ रही है। दिस टीम इज ब्रिंगिंग कृष्ण लीला थ्रू डांस ड्रामा, और डांस फॉर्म है कथक का। करीब करीब 10 लोगों की टीम ट्रैवल कर रही है इंडिया से, एंड दे आर द नेम ऑफ द इवेंट इज कृष्णा एक नृत्याविष्कार। ये बहुत बहुत ही अच्छा इवेंट है, और टिकट्स बहुत रीजनेबल है, $20 जनरल एडमिशन, $30 VIP सिटिंग। इसके बाद थर्सडे सितंबर 17th को हमारा गोल ये है, HSNC का पिछले 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यंग और यूथ को दें।
0: नाइस।
1: सो ये जो सितंबर 17th को जो 8 बजे से प्रोग्राम होगा, इसमें हमारे जो यंग और यूथ हैं वो लोग आकर के भजन या डिवोशनल सॉन्ग्स गाएंगे। सो दैट वी शुड कम एंड सपोर्ट ऑल दीज यंग किड्स एंड एंजॉय देयर सॉन्ग। फिर आपका जो 19th को है सैटरडे, इट्स अ वेरी बिजी डे एट HSNC। हम लोग हर साल की तरह इस साल सैटरडे सुबह 9:30 बजे से गणेश महाअभिषेक सहस्त्रावर्तन के साथ करेंगे। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं hsnctemple.org पर जाकर के, और सारी जो भी आपको अभिषेक में जो जिस भी चीज की जरूरत है वो सारा HSNC प्रोवाइड करेगा। आपको केवल आपको और आपकी फैमिली को लेके आना है, एवरीथिंग एल्स वी विल प्रोवाइड। इट इज अ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस डूइंग दिस सहस्त्रावर्तन महाअभिषेक इनसाइड ऑफ द मेन हॉल। उसी दिन शाम को हमारा इस साल का फ्लैगशिप इवेंट है मोरियारी। ये मोरियारे प्रोग्राम यूनिक इसलिए है क्योंकि इस बार की जो थीम है उसमें हम लोग ये शोकेस करने वाले हैं कि गणेश फेस्टिवल सारे इंडिया में अलग अलग जगह किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे मालूम नहीं कि पंजाब में गणेश फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, लेकिन ये जो ग्रुप है, परफॉर्मर्स ऑफ अबाउट 100 पीपल, दे आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दिस थ्रू द वे ऑफ डांस, म्यूजिक, ड्रामा, साउंड एंड लाइट। अ वेरी यूनिक शो, मस्ट वॉच शो, दैट इज ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 19th 8 PM ऑनवर्ड्स।
0: ओके।
1: संडे को अगेन अ वेरी बिजी डे। सुबह हम लोग गणेश यज्ञ करेंगे, कुछ लोग इसको गणेश याग बोलते हैं। ये यज्ञ सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, और इस बार हम लोग गार्डन में करेंगे, जो मेन हॉल किचन साइड के जो पास वाला गार्डन है उस तरफ करेंगे। अगर आपको रजिस्टर करना है, यू कैन रजिस्टर एट hsnctemple.org। ये बहुत ही डिवाइन याग होता है, यज्ञ होता है। इसके अंदर करीब 2-2.5 घंटे हम लोग यज्ञ करते हैं। आप अपना खुद का इंडिविजुअल कुंड में भी यज्ञ कर सकते हैं, और एक महाकुंड है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है, hsnctemple.org। फिर उसी दिन शाम को, यज्ञ शाम को, एक्चुअली नॉट शाम को, दोपहर को 3 बजे से अगेन अ वेरी यूनिक प्रोग्राम, अ टीम ऑफ अबाउट 10 डांसर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। It is the Aditi Bhagwat group. She is bringing a dance ensemble from her collection of over 10-15 years. So, ये बहुत ही entertaining, बहुत ही मजेदार show होगा। 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का show है HSNC Cultural Hall में। और उसी दिन शाम को आरती के बाद शाम को 8 बजे से हम लोगों का गुजराती folk music का program रमजत, जो काफी साल से हम लोग करते आ रहे हैं, काफी फॉलोइंग है इसकी। हमारे लोकल गुजराती आर्टिस्ट आते हैं, वो बहुत अच्छे से गुजराती फोक म्यूजिक प्रेजेंट करते हैं। सो प्लीज डू कम फॉर दिस दिस शो। एंड देन अगेन मंडे सेप्टेम्बर 21st को मधुर ग्रुप, जो अगेन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर्स एंड एडल्ट्स का म्यूजिक ग्रुप है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म डिवोशनल सॉन्ग्स एंड भजन। सेप्टेम्बर 26th को हम लोग अगेन एक यूनिक वोकल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इट इज अबाउट गणपति डिवोशनल सॉन्ग्स इन मल्टीपल लैंग्वेज बट विथ कर्नाटिक स्टाइल। सो इट्स अ क्लासिकल म्यूजिक शो, बट इट इज नॉट जस्ट यू नो हिंदी या मराठी या संस्कृत और कन्नड़ा और तेलुगु, मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो इट्स अ वेरी लाइक यू नो एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया विल एंजॉय एंड लव दिस।
0: वेरी नाइस।
1: And as Van was telling while I was not able to speak to you all, this year for the first time, and not just this year, I would say first time at HSNC, we are bringing a very unique bhajan, which is bhajan jamming. Thursday, September 24th ko, kyunki वो हम एक ही दिन दूर रहेंगे क्योंकि 25 तारीख को हमारा विसर्जन है और हम चाहेंगे कि गणपति बप्पा को बहुत धूमधाम से भजन गा के, डांस करके, मस्ती करके उनको खुश रखें, ताकि बहुत अच्छी सी यादें लेकर के गणपति बप्पा जाएं और अगले साल हमारे बहुत सारे आशीर्वाद लेकर के वापस आए। तो भजन जैमिंग प्लीज डोंट मिस कीजिए। आरती के बाद थर्सडे सेप्टेम्बर 24th 8 PM से स्टार्ट होगा, करीब करीब 2 घंटे का। तो आप आपके साथ बहुत सारी भक्ति और बहुत सारी एनर्जी लेके आइए, जिसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से नाचते हुए गणपति बप्पा के साथ उनका आशीर्वाद लेंगे। और लास्टली सेप्टेम्बर 25th विसर्जन होगा। विसर्जन का जो अनंत पूजा है वो 4:30 बजे स्टार्ट करेंगे और विसर्जन प्रोसेशन वगैरह सब कंप्लीट होते होते इट विल बी अबाउट 7:30। सो प्लीज डू कम एंड पार्टिसिपेट एंड से गुड बाय टू गणपति बप्पा फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंड अगेन ऑन सेप्टेम्बर 26th वी आर ब्रिंगिंग अनदर यूनिक शो। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हम बहुत सारी यूनिक चीजें लेके आ रहे हैं। भरतनाट्यम डांस शो है, कृष्ण लीला, वी आर ब्रिंगिंग डांस एंसेंबल, वी आर हैविंग भजन जैमिंग, वी आर हैविंग गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेशन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया परफॉर्म बाय अबाउट 100 पार्टिसिपेंट। एंड ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 26th वी आर ब्रिंगिंग फर्स्ट टाइम गौराई खेला। इट इज वेरी यूनिक फॉर अस, स्पेशली फॉर नॉन पीपल हु डोंट लिव इन महाराष्ट्र। In Maharashtra, during Ganesh festival, we celebrate and we pray for Gauri, Devi Gauri. And the way it is done in Maharashtra is ladies, they play lots of games, they dance, they sing. So we are bringing something of that kind at HSNC on September 26th. This is going to be between 1 p.m. to 4 p.m. So if you want to learn about this culture, please do come. It is open for all. It's not just for Maharashtra. If you are from, like me, if you are from Madhya Pradesh, you will still enjoy this this show. So please do come and share your feedback. And we will end the Ganesh Festival, 2026 Ganesh Festival, by a very well-known, sought-after show called Pantakshari, which is on Sunday, September 27th. I think I don't have to say much about Pantakshari because you all know yes. about it. So yes. come enjoy this this competition, and that will be the end of the Ganesh Festival this year.
0: यस, तो जैसे पराग जी बता रहे थे कि भाई ये दिस प्रोग्राम गणेश जो फेस्टिवल है हमारा वो सभी लोगों के लिए है। इट डजेंट मैटर, आपके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे है। मे बी यू आर अ यूथ, यू आर यंग, यू नो यू हैव किड्स इन द फैमिली, आप हो सीनियर्स हैं। 10 दिन का एक वहाँ पे बापा के साथ में हमारा मेला होता है एक देखा जाए तो, और एवरीडे यहाँ पे प्रसाद, आरती, डिवोशन, भक्ति, एवरीथिंग इज देयर एंड आई थिंक ऑल्सो अनदर थिंग इज द कि लाइक बहुत लोग जो यहाँ पे मूव हो रहे हैं दे डोंट नो कि गणेश फेस्टिवल कहाँ होता है बिकॉज आप वहाँ पे जहाँ से होंगे वहाँ पे आपके कुछ टेम्पल्स में होते होंगे बट ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है HSNC में बिकॉज द टेम्पल इज ग्रोइंग इट्स गोइंग बिग और ये एक त्यौहार है जो पूरे साल में हम सभी लोग वेट करते हैं इस दिन के आने की तो अगेन देयर इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन केस इफ यू वॉन्ट टू वॉलंटियर अगर आपको कोई सेवा करनी है या सेवा देनी है इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डोनेशंस इन यू नो एनीथिंग यू नीड हेल्प विद प्लीज स्टॉप बाय एट टेम्पल टॉक टू पराग जी और टॉक टू एनीबडी इन HSNC एज वेल बहुत कुछ चल रहा है आज वहां पे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो प्लीज जाइए बट बापा का प्रोग्राम इज गोना बी फैंटास्टिक बहुत सारे शोज हैं यू कैन ऑल्सो बाय अ बंच ऑफ कॉम्बो टिकट्स इन दिस लोकल आर्टिस्ट हैं बाहर से आ रहे हैं एंड वंस अगेन आई विल से वन थिंग पराग जी ने इतनी बड़ी लिस्ट तो बताई है बट इसके पीछे जो वर्क फोर्स जो मेहनत जो लगती है जो वॉलंटियर्स काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स काम करते हैं जो परफॉर्मर्स आते हैं ये एक बहुत बड़ा मेहमत टास्क है राइट तो इससे प्लीज़ आके हेल्प कीजिए सपोर्ट कीजिए ये कम्युनिटी हमारी है ये टेम्पल भी हमारा है सो आई विल ट्रूली अप्रिशिएट और बापा भी हमारे हैं सो प्लीज़ स्टॉप बाय एंजॉय दर्शन लीजिए और पूजा कीजिए और 10 दिन का यू नो गणेश उत्सव का जो मेला है वहां पे उसे एंजॉय कीजिए पराग जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज इतना कुछ है एंड अगेन I'll be circulating and there is also you know flyers available on temple site aap kahin pe bhi jayenge temple mein aapko sare programs ki detail pata lag jayegi hamare site pe tickets bhi book kar sakte hain in events ke liye again everything is a donation to the temple and every support anything that you could do to help out matters a lot to all of us parag ji anything else you want to add
1: नहीं थैंक यू वेरी मच ये आपकी संस्कृति है ये अपनी संस्कृति है ये आपका कैंपस है ये अपना कैंपस है मिलके साथ बनाएंगे
0: यस
1: थैंक यू वैन
0: थैंक यू पराग जी फॉर कॉलिंग ऐसे ही कॉल करते रहिए और अभी तो बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं बहुत त्यौहार आ रहे हैं तो यू नो कीप कॉलिंग कीप इन्फॉर्मिंग अस कि क्या नवा हो रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर द एंटायर RTP इज गोना बी देयर बिकॉज आई कॉल दिस RTP चाराजा राइट लाइक दिस इज द बिगेस्ट इवेंट वी हैव हियर फॉर द RTP तो इसकी तो पूरी धूमधाम से यू नो एंजॉयमेंट होनी चाहिए और इसकी सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए तो चलिए थैंक यू सो मच पराग जी फॉर कॉलिंग एंड कीप कॉलिंग अस एंड कीप इन्फॉर्मिंग अस फॉर ऑल द गुड स्टफ व्हिच इज हैपनिंग देयर
1: एब्सोल्युटली थैंक यू वेरी मच
0: बाय बाय तो जैसा कि व्यूअर लिसनर्स आपने सुना कि RTP में सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश उत्सव HSNC में मनाया जा रहा है तो लॉट्स ऑफ थिंग हैपनिंग अगर आप भूल गए हैं प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ें आई डेफिनेटली रेकमेंड गो चेक आउट देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट देयर तो चलिए गाना वाना सुनिए बहुत लंबी चौड़ी बातें हो चुकी हैं देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू

WTMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.

क्या बात है अदनान सामी, यस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गणेश एंड गणपति बाप्पा एंड HSNC, तो थोड़ा टाइम उसमें निकल गया। बट चलिए कॉलेज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कॉलेज का असली खर्चा, फोर हिडन कॉस्ट, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो जब पेरेंट्स कहते हैं कि कॉलेज महंगी है, राइट, वो जनरली सिर्फ ट्यूशन के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों देर फोर डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस, राइट। तो नंबर वन, यस यू आर राइट, ट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉस्ट। नंबर टू, रहने और खाने का खर्चा, विच इज फूड, हाउसिंग, बुक्स। नंबर थ्री, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसे, यानी कि पैसा बचा के चार साल तक रखना और उसको ऊपर स्पेंड करना और उसको इन्वेस्ट करना किसी डिग्री के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, राइट। के और नंबर फोर जो सबसे डेंजरस है वो है गलत डिग्री चूज़ करने की कॉस्ट। कि लाइक भाई आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू हियर समबडी टेकिंग अ डिग्री इन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। मुझे समझ ही नहीं आया आज तक कि भाई हाउ वुड यू बी एबल टू सस्टेन दैट लोन विद दैट डिग्री। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो डिग्री कोई ख़राब है, बट गैस एक हॉबी को डिग्री में कन्वर्ट करना, आई डोंट नो हाउ स्मार्ट इज दैट। या कोई ऐसी सम डिग्रीज विच आर गोना बी इररिलेवेंट एट सम पॉइंट, राइट। तो उसमें कैसे आप चलाएंगे अपना सब कुछ, राइट। तो चौथी वाली कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है और ये सबसे महंगी भी हो सकती है। बिकॉज अगर आपने कोई गलत डिग्री ले रखी है एंड देन you're going to pay a big price for that. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आई ऑलवेज, जैसे मैंने पहले बताया होगा कि छोटा था तो ऐसा लगता था कि अरे क्रूज में जाएंगे, शिप में रहेंगे, शेफ बनेंगे, पूरी दुनिया घूमने मिलेगी, ये वो एंड ऑल दैट व्हेन आई वाज इन इंडिया, राइट। द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया बॉम्बे में दादर में है, कलिनरी आर्ट इंस्टीट्यूट, उसमें आई वेंट इन एंड पैसे वैसे कम होते थे उस टाइम, तो आई सम हाउ क्रैक द इंटरव्यू व्हाटएवर एंड आई वाज गोइंग टू हैव अ फाइनल पैनल इंटरव्यू और सम हाउ क्रैक इट। और जब फीस भरने के लिए गया तो द डीन और समबडी टोल्ड मी, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। मैं बोला क्यों, व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, एंड ही सेड के you going out in the world doesn't mean you will be able to see the world, you will be living your life in kitchen, the entire life in kitchen as a chef, right? And I was like, oh, ye to kabhi socha hi nahi maine, right? So again, this is an this is the galat degree ki dangerous cost hai, ke yeah khwab kuch aur hai magar kaam kuch aur hai, right? And that is you don't know about. So ek hisab lagate hain, मान लीजिए कि ट्यूशन, हाउसिंग, बुक सब मिलाकर एक एवरेज स्कूल का टोटल खर्चा 140,000 है और चार साल के लिए। अगर बच्चा ग्रेजुएट होकर 55,000 की स्टार्टिंग जॉब मिलती है वो भी पता नहीं, तो ठीक है कि ठीक है कि ये डिसेंट है कि अगर आपको इतना इन्वेस्ट करके 200-250 डाल के यू आर गेटिंग एट $55,000 जॉब, दैट इज ऑल्सो नॉट 100% श्योर, नाइट, कोई गलत डिग्री से। लेकिन अगर वही बच्चा 20,000 का खर्चा करके कोई कम्युनिटी कॉलेज में अगर कोई एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले रहा है, या 65-70,000 में कोई जॉब शुरू कर रहा है, तो सडनली आपका पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा बिकॉज आपका डेट बहुत कम है उस डिग्री के ऊपर। तो अब एक वर्ड सीखे जो देसी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हम स्टॉक खरीदते वक्त ये पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, या अगर आप कोई इंडेक्स फंड या कुछ ऐसा लेते हैं, राइट, कि हम देखते हैं। तो घर खरीदते वक्त भी हम पूछते हैं कि अप्रिसिएशन क्या होगा, राइट, कैसे होगा। बिजनेस शुरू करते वक्त भी हम यही सोचते हैं कि भाई रेवेन्यू क्या आएगा, राइट। लेकिन कॉलेज के टाइम पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि डिग्री तो चाहिए, राइट, वी डोंट टॉक अबाउट लाइक द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर। तो सही सवाल है कि डिग्री किस प्राइस पर मिल रही है आपको, किस फील्ड में मिल रही है, और किस करियर आउट, ये करियर का आउटकम क्या है। जैसे कि लाइक आई डोंट हाउ टू से इट, बट देयर सो मेनी डिग्रीज नाउ विच आर गोना बी प्रीटी मच एब्सोल्यूट नाउ बिकॉज ऑफ AI आउट देयर। आज के टाइम पे तो इवन पीपल आर चैलेंजिंग द डॉक्टर्स जो दवाइयाँ लेकर है, क्योंकि वो सीधा डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि ओ मुझे ये वाली दवाई चाहिए, इंस्टेड ऑफ डॉक्टर एग्जामिनिंग, बिकॉज AI इज़ ऑलरेडी गिविंग देम द आंसर्स फॉर दीज थिंग्स, राइट। तो ये सवाल असली माँ बाप
यू नो वाला प्यार है कि क्या है, किसी इमोशनल है कि कैलकुलेशन कभी नहीं होती डिग्री के ऊपर. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक कोई भी डिग्री लेके चेप दो बच्चे को, राइट? डोंट गेट इनटू दैट, राइट? क्योंकि बहुत सारे नंबर है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ कि भाई यू नो एक एवरेज स्टूडेंट पेमेंट जो बैचलर्स डिग्री होल्ड करता है वो लगभग $503 की मंथ की होती है, जो फेडरल सर्वे की तरफ मुताबिक से हैं. कर्जा चुकाने में एवरेज टाइम उसको 20 साल लगता है अगर उसको एक बैचलर्स डिग्री को उसको उसको पे ऑफ करना है. ये ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन का डेटा बता रहा है, राइट? कर्जा रखने वाले जो बच्चे हैं उनमें 47% नियरली हाफ हो गया वो घर नहीं खरीद पा रहे बिकॉज उनकी ऑलरेडी कॉलेज की एजुकेशन का ये जो लोन है और उनके सर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है. कंपैरिजन जो 55% जो हैं जो कम्युनिटी कॉलेज या ऐसी जो जो उनके पास आर्ट स्किल्स और डिग्रीज हैं उनके पास सिर्फ 14,000 का लोन है और वो लोग जो ले रहे हैं और वो इमीडिएटली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक तरफ में आप इतनी लोन लेके जॉब ढूंढ रहे हैं और एक तरफ में आप स्किल सेट्स लेके अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं जिसमें यू आर अर्निंग एंड यू आर जस्ट नॉकिंग इट ऑफ विद इन 6 मंथ्स आउट ऑफ द पार्क, राइट? तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि कर्जा मत लीजिए डिग्री लेने के लिए, राइट? कई बार जरूरी होता है. इफ़ यू गोइंग फॉर लॉ, डॉक्टर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट यू नो इफ़ यू फील लाइक द चाइल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आप ज़बरदस्ती डिग्री उनके ऊपर ठोक रहे हैं या थोप रहे हैं, तो उसके ऊपर ये भी ज़रूर पूछिए कि इस डिग्री का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, राइट? अगर जवाब शायद है कि कोई पता नहीं कि ये कर पाएगा या ये होगा कि नहीं, तो प्लीज़ आप दूसरा रास्ता भी चुनिए और उसके बारे में सोचिए बिकॉज द टाइम हैज़ चेंज नाउ. इट्स नो लॉन्गर द सेम थिंग कि आप यू नो पुरानी डिग्री लीजिए और जॉब आपके लिए रेडी पड़ी है एज सून एज यू आर हैविंग अ डिग्री इन योर हैंड. तो चलो गाने वाने सुनिए, दैन बी राइट आफ्टर द ब्रेक. ये शो चालू रखते हैं, हम इसी के ऊपर में बात करते रहेंगे, पर आज थोड़े गाने वाने हो जाए अब.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आरिफ लोहार जुगनी जी, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम कोक स्टूडियो। तो चलिए हम अभी और इस कॉलेज डिग्री का मिथ बर्स्ट करते हैं, राइट। तो एआई ने नौकरी का नक्शा कैसे बदल दिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम उस प्लेयर की बात करने जा रहे हैं जो हमारे ज़माने में थी नहीं, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी भी है। तो जब हम कॉलेज में थे कोई चैट जीपीटी नहीं था, आज हमारे जो बच्चे हैं वो एआई से ऐसे लिख सकते हैं और लिखवा सकते हैं। लिटरली माय डॉटर वाज आस्किंग समथिंग अबाउट हर होमवर्क टू चैट जीपीटी, और उसने उसको प्राइम नंबर और इसके बारे में सब कुछ बताया, राइट। सो इमेजिन लाइक देर आर थिंग्स आउट देयर विच इज ईजली ऑन फिंगर टिप्स ऑन फोन्स और कंप्यूटर्स और व्हाटएवर, राइट। कैलकुलस समझ सकते हैं आप, एल्गोरिदम समझ सकते हैं आप, एलजेब्रा समझ सकते हैं, जो हमको समझने के लिए यार सर फट जाता था हमारा, राइट। वो खुद कोड बना सकते हैं, वो AI आपकी वेबसाइट बना रही है, वो प्रेजेंटेशन बना रही है, कितना कुछ ईजी हो गया है। लेकिन AI सिर्फ स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं कर रही, राइट। वो एम्प्लॉयर्स को भी सोच में डाल रही है कि भाई वो एंट्री लेवल जो जॉब्स के जो काम होते थे, जो कंपनीज ट्रेडिशनली नए ग्रेजुएट से करवाती थी, रिपोर्ट्स लिखवाना, स्प्रेडशीट्स बनवाना, डेटा एनालाइज करना, बेसिक रिसर्च, कोडिंग स्किल्स, राइट, लाइक ये सब कुछ AI कर रहा है। अब तो सोचिए, अगर कॉलेज का पूरा एक फॉर्मूला था कि डिग्री लो, एंट्री लेवल जॉब लो, एंट्री लेवल से एक्सपीरियंस आएगा, एक फिर करियर जॉब ले लो, फिर डायरेक्टर, MD, ये पूरी एक लैडर थी, राइट। हमने एक्सपीरियंस हो, लोग चाहिए, अभी कंपनी जो देख रही है वो सोच रही कि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि बेसिक काम तो सब हमारा AI कर रही है। तो जो AI जो एंट्री लेवल्स जॉब अगर सब AI पे कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो जो पहली लैडर थी जो जिस पे स्टेप करते थे लोग एज एन एंट्री लेवल, वो ही इज इन डेंजर राइट नाउ। तो 3 लाख की डिग्री, 2.5 लाख की डिग्री और बाद में जो एंट्री लेवल जॉब, उसमें AI घुस गया। तो हाउ विल द वर्क फोर्स एडवांस, राइट। क्या रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स जो 22 से 27 साल के हैं, 22 से 27 साल के, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में 9.7% तक है, लगभग हाई स्कूल वर्कर्स और ये सब के बराबर है, राइट। कि भाई 9.7% है अगर डिग्री लेने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो जॉब में AI का ज़्यादा असर है उनमें 22 से 25 साल के यंग वर्कर्स की अनएम्प्लॉयमेंट में 13% गिरावट है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं, मतलब देर गोइंग डाउन इन नंबर्स। कई कंपनी ने तो फ्रीज लगा दिया एंट्री लेवल जॉब के ऊपर, कि दे आर ट्राइंग टू से ओके इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन एंट्री लेवल एंड देन ग्रूमिंग फोक्स एंड स्पेंडिंग टाइम एंड इनहेरिटिंग मिस्टेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड द मिनट समबडी गेट्स एक्सपीरियंस दे लीव, व्हाई डोंट जस्ट पुट अ बॉट और जस्ट गो विद AI सॉल्यूशन एंड लेट द AI डू इट्स जॉब, राइट। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि ये जो एक लैडर थी वो लैडर का पहला स्टेप टूटने आ रहा है, राइट। तो ये एक मिक्स तस्वीर है, राइट, कि कुछ इंडस्ट्री में एंट्री लेवल हायरिंग सिक्योर रही है और कुछ में बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो सिर्फ डिग्री होने से जॉब की गारंटी नहीं रह गई है इस टाइम पे। वो जो पहले था कि भाई डिग्री लो आपको जॉब मिल जाएगी, करियर बन जाएगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एनीमोर, राइट। कंपनी सब पूछ रही कि तुम कर क्या सकते हो, व्हाट डू यू नो, सिर्फ डिग्री होने से तुम्हारे पास में इट्स नॉट अ जॉब, मैंने कितनी लोगों को हायर किया है और डिग्री इज द ओनली वन चेक बॉक्स इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। वी लुकिंग फॉर के हाउ इज द पर्सन प्रेजेंटेबल, कैन ही टॉक, कैन ही डू समथिंग, कैन व्हाट डू नो फिजिकली, मेंटली आर दे प्रेजेंटेबल, ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो अगर बेसिक ड्रिंक के बारे में बात करें तो एक कंप्यूटर साइंस कर लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, 4 साल की डिग्री है, करियर सेफ है, अच्छी जॉब, लाइफस्टाइल, सब कुछ हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि भाई कंप्यूटर साइंस कर लो और यू विल बी गुड टू गो। लेकिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री खुद ही बदल चुकी है, AI ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा तरीका ही बदल दिया है, कंपनी सब ज़्यादा सिलेक्टिव हो रही है, राइट। वो तो सवाल है कि क्या हर स्मार्ट बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाना चाहिए, जस्ट डू दैट एंड यू विल बी गुड टू गो, नो, दैट्स नॉट अ केस एनीमोर। सोचिए एक बच्चा जो कोडिंग पसंद नहीं है, उसे ज़बरदस्ती अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डाल दिया, 4 साल
2 लाख का उसके ऊपर लोन डाल दिया और वो कह रहा है कि मुझे पसंद ही नहीं है, राइट? तो ये सक्सेस नहीं है, ये एक महंगा आपका मिस्टेक है, इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू डू नाउ। शायद फ्यूचर उन लोगों का है जो जो दोनों ही चीज़ों में जुड़े हैं, राइट? कि भाई दे कैन वर्क एज वेल एज दे हैव सम एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये सब को। वो होंगे जो एक रियल वर्ल्ड समझ सकें और वो AI के साथ में अपने आप को जोड़ सकें, इन चीज़ों की कुछ डिमांड कुछ वैल्यूज़ होंगी। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि भाई आप सोच रहे हैं कि अगर आप कॉलेज की डिग्री भी लेके खड़े हो जाएं, इट्स एंट्री लेवल जॉब्स ही ख़त्म हो रही हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, राइट? आई विल टेल यू द सिंपल थिंग, थर्ड ग्रेड मैंने उसको पूछा कि सीजन फोर्थ ग्रेड आई आस्क डू यू रिमेंबर व्हाट डिड यू लर्न इन थर्ड ग्रेड, बोली आई एब्सोल्युटली डोंट रिमेंबर एनीथिंग। इमेजिन कि वो उनका ब्रेन इतना शार्प होता है एंड देर स्टिल डिबेटिंग कि मुझे सिखाया गया था थर्ड ग्रेड में, मुझे वही याद नहीं है। तो इमेजिन आप पूरी डिग्री लेके इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट यू हैव डन, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन ये चीज़, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो गाने वाने सुनिए, विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज डिग्री। ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे होने आ रहे हैं, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन दिस, बट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अ लॉट मोर थिंग्स, बट आई मिस सम टाइम एज वेल। तो चलिए गाने सुनिए, दिल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

क्या बात है। तो हम दोस्तों ऑलमोस्ट 2 घंटे पे आप पहुंच चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा। तो हम बात कर रहे हैं 4 साल की कॉलेज की डिग्री की और उसके मिथ की, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे कि भाई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए, राइट। आज जहाँ ट्राई कीजिए कि किसी भी इंडियन पेरेंट्स के कोई ग्रुप में पूछिए कि भाई आपका बच्चा क्या बनना चाहता है और आप या क्या बनाना चाहते हैं, तो देखिए आपको ये जवाब आता है कि नहीं। लाइक डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये 3 आंसर आएंगे, या लॉयर ऐसा कुछ आ जाएगा, या MBA ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। अब पूछिए उनको कि लाइक भाई हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम, HVAC, यू नो, ये सब चीज़ें, पावर सिस्टम, ये कौन मेंटेन करेगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कौन चलाएगा, राइट। डू यू थिंक अवर किड्स कैन डू इट, और देखिए आपको क्या आंसर आता है। मैं आपको 9 times out of 10 बोलूँगा कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस क्वेश्चन को। नहीं, तो ये करियर्स छोटे नहीं है, राइट। खुद स्किल ट्रेड्स में एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और लाइसेंसिंग के साथ में कमी बहुत हो सकती है, राइट। कि भाई आपको, यू नो, विथ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट यूर गोन बी एबल टू मेक लाइक 200K ईजीली अ ईयर, रादर देन हैविंग अ 250K डेट ऑन इट, राइट। जैसे कि लेकिन एक स्किल ट्रेड की आपको मैं बताता हूँ, राइट। कि एक इलेक्ट्रिशियन है, एंट्री लेवल जॉब, जो मीडियम सैलरी है उनकी जो होती है वो 60 to 70,000 होती है सालाना। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस दे मेक अबाउट ऑलमोस्ट 100 or 120,000 के रेंज में। HVAC टेक्नीशियंस जो होते हैं, नेशनल या मीडियन एवरेज उनकी है वो वे अबाउ दी यू नो लेवल के ऊपर है। HVAC सुपरवाइजर्स जो होते हैं, राइट, 7+ years का एक्सपीरियंस में, उनकी मीडियन जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 120,000 to 150,000 है। लाइक आई कैन कीप गोइंग ऑन दिस नंबर्स, राइट। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे को इलेक्ट्रिशियन बना दो या प्लम्बर बना दो या ये कर दो, राइट, बिल्कुल नहीं है, राइट। दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बच्चों से कुछ ये सिखाना बंद करें कि भाई, यू नो, आपके पास 4 ही करियर पाथ है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या यू नो कुछ तो भी ऐसा, राइट, यू नो द हाई लेवल वंस व्हाट वी आर टॉप कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। दिस इज़ नॉट द ओनली पैथ। आप उनका पूरा एक रास्ता और सोचने का अपना भी और उनका एक ब्लॉक कर रहे हैं। और एक बात, लेकिन कोई ट्रेड्स में अगर कोई कॉलेज में चल के आगे पढ़कर खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो दे आर, यू नो, जैसे मैंने पहले बताया कि यू नो दीज थिंग्स आर इन सच अ हाई डिमांड कि आप कभी गर्मी में कोई HVAC कंपनी को फ़ोन कीजिए एंड सी हाउ मच दे चार्ज यू। इट्स एब्सोल्युटली लाइक यू नो इम्पॉसिबल टू फाइंड देम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इतनी डिमांड है उस चीज़ की, राइट। और क्या उसमें आपकी लागत है, लाइसेंस, एक्सपीरियंस, एंड देयर यू गो, यू आर बिजनेस मैन आफ्टर दैट। तो जब आप अपने बच्चे को पूछ रहे हैं, राइट, कि तुम्हें क्या बनना है, ज़रा खुले दिमाग से सोचिए और खुले दिमाग से उसको सोचने दीजिए। हर बच्चा, एवरीबडी कैन नॉट बी अ डॉक्टर और अ लॉयर और यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई HVAC या जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग या ये कुछ कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड करियर हियर। आगे जाके दिस यही चीज़ में वैल्यू है और यही चीज़ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, बिकॉज ए यू हैव स्किल्स इन योर हैंड, यू कैन एक्सपेंड, यू हैव योर बिजनेस, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कोशिश कीजिए कि आप खुद ही देखते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है एक हैंडीमैन मिलना, तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट होगा एक प्लम्बर या HVAC का इलेक्ट्रिशियन मिलना, राइट। लाइक दीज आर द थिंग्स व्हिच इज़ वेरी हाई इन डिमांड एट दिस पॉइंट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगेन, वंस अगेन, नॉट सेइंग एवरीबॉडी शुड नॉट गो टू कॉलेज, बट दीज आर ऑल्सो द डिग्रीज, दीज आर ऑल्सो थिंग्स दैट यू कुड लर्न, दीज आर द स्किल्स व्हिच यू कुड लर्न व्हिच कुड लैंड यू इनटू अनदर करियर एंड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद यू नो अ ब्यूटीफुल करियर अहेड ऑफ यू। गाना सुनिए, देन आते हैं, विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक।

तो जी हाँ दोस्तों, वेयर 15 मिनट्स लेफ्ट टू द शो और मुझे फटाफट वाइंड अप करना है बिकॉज आई वांट टू कवर दीज टॉपिक्स. द लास्ट वन इज द कम्युनिटी कॉलेज, राइट? ये एक टैबू है हमारी कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो, राइट? जब ये बात करते हैं तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है. जब आप बोलते हैं कि भाई किसी अपनी फैमिली में कि भाई व्हाट इज योर किड गोइंग इन विच कॉलेज, कॉलेज मतलब कि प्रेस्टीज है, अरे भाई आप कोई बड़ी कॉलेज में जा रहे हो, मतलब यू आर अ बिग शॉट, राइट? मगर अगर आप ये कह दें कि मेरा बेटा कम्युनिटी कॉलेज में जा रहा है तो कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि अरे यार ये ज़िंदगी में फेल हो गया है. दैट्स नॉट ट्रू, राइट? ये सोच ही बहुत गलत है. कम्युनिटी कॉलेज में एक इनक्रेडिबल स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जाना, राइट? आई टेल यू मैंने ये रास्ता चुना है, राइट? कि भाई प्री रिक्विजिट्स वहाँ पे कंप्लीट कीजिए, विच इज़ लाइक यू नो 4 ईयर्स में हाफ द क्रेडिट्स आर जस्ट प्री रिक्विजिट्स, लाइक 101 102 लेवल के जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे ख़त्म कीजिए. डायरेक्टली एक्सप्लोर, बिकॉज इट गिव्स यू 2 ईयर्स टाइम टू एक्सप्लोर हाउ यू गो अबाउट योर एजुकेशन, आपका किस चीज़ में दिल लग रहा है. यू गेट मोर टाइम टू चूज कि भाई मुझे ये करना है, कि डायरेक्टली आप उसका फुल प्रीमियम प्राइस पे करके डायरेक्टली वो डिग्री की लाइन की तरफ जा रहे हैं. तो आप इसमें पैसा भी बचाते हैं और देन यू डायरेक्टली ट्रांसफर योर क्रेडिट्स हाफ ऑफ इट टू योर कॉलेज. आई थिंक आई रिमेंबर आई डिड 68 क्रेडिट्स इन कम्युनिटी कॉलेज और उसमें से 63 मैंने अपनी डिग्री के अगेंस्ट ट्रांसफर किए, विच इज हाफ ऑफ द कॉस्ट, नियरली फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट आप पे कर रहे हैं व्हाट यू विल पे इन द कॉलेज. तो और उससे क्या हो रहा है, आपका डेट भी कम हो रहा है बिकॉज यू आर फ्री बर्ड व्हेन यू गेटिंग आउट विद लेस डेट, राइट? तो ये फेलियर नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है. एंड कम्युनिटी कॉलेजेस आर बीन क्रिएटेड फॉर दिस रीजन बिकॉज यू नो फोक्स हु आर वर्किंग आउट देयर दे वांट टू गेट सर्टिफिकेशन एंड अदर थिंग्स और कोई स्किल्स और आर्ट सीखना है, हु कैन नॉट अफोर्ड कॉलेज एंड ऑल अदर थिंग्स, दिस इज अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. इट्स अनदर हैक, जो बोलते हैं ना एक बैकडोर रॉथ IRA वाला, जो कहते हैं कि IRA में कन्वर्ट करना, तो ये उसी तरीके का हैक हैक है. Going to community college, go there for 2 years, explore yourself, understand what you want to do, and then all these community colleges have tie-ups to the universities where they are accredited. So, आपके जितने भी credits हैं वो transfer हो जाते हैं. आपको bachelor's लेनी है तो 120 credits होते हैं या उतने कुछ आसपास होते हैं और 60 आपके community college will be transferring in really in fraction of the cost. इससे हो क्या रहा है, right? You're coming out with less debt. फ्रैक्शनली आपके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा है. तो यू नो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट टू थिंक अबाउट कि भाई ये भी एक तरीका है. जैसे आई टेल यू आई वेंट देयर फॉर सेम थिंग, अरे कॉलेज की डिग्री तो लेनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लो. आई गॉट इन विद इन 6 मंथ्स, आई फेल्ट लाइक यार व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आई एम नॉट सेइंग डोंट, कुछ गलत है, बट आई वॉज लाइक यू नो कौन मुझे खड़ा रखेगा इसके साथ में, कि मुझे तो कोई बिजनेस खोलना नहीं, तो देन व्हाट्स द वैल्यू, व्हाई आई एम डूइंग दिस. एंड देन इमीडिएटली आई रियलाइज आफ्टर 1 ईयर कि यार इसका कुछ नहीं होगा तेरा ये डिग्री लेके. इमीडिएटली स्विच्ड टू यू नो अनदर डिग्री विच इज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड माई 60 क्रेडिट्स वर ट्रांसफर एग्जैक्टली अगेंस्ट दैट, अगेंस्ट द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री थी, राइट? हाफ ऑफ द प्राइस यू पेड फॉर इट, लेस देन हाफ इज व्हाट आई विल टेल यू, राइट? बट दैट्स ऑल्सो अनदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, कि यू गेट सम टाइम टू थिंक बिकॉज योर करियर पाथ, योर गोल्स, थिंग्स माइट चेंज. और उसके साथ में आप कोई आर्ट या कोई दूसरी चीज़ भी सीख सकते हैं, बिकॉज कम्युनिटी कॉलेज इज नॉट दैट बिजी और आपको वहाँ पर जाकर रहने की और सब चीज़ों की जरूरत नहीं है. हियर वी हैव वेक टेक, समथिंग वेरी सिमिलर, लाइक विच गिव्स ऑल द, आई नो सेवरल पीपल हु हैव गॉन देयर एंड लर्न दीज स्किल्स, जिसमें उन्होंने जाके अपने लिए सीखा है. देन दे हैव गॉट जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑल द टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, राइट? सो डू चेक दैट आउट. गाना सुनिए, देन आते हैं एंड देन विल कम टू क्लोजिंग. अगेन दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक, यू नो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट आई केप्ट इट प्रीटी हाई लेवल एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि भाई whatever you're getting into, think about it first. Your degree needs to be you know solid, your kid's passion needs to be there. Ek tarike se usko jhonkna band kijiye ki bhai yahi char option hai, iske paas koi option nahi hai. AI is on your head, right? And the money situation, the debt is what you're going to get is going to be on top of your head. Agar aapne nahi save kiya hai to shuru kijiye save karna. To gaane suniye, then I'll be right after the break.

तो जी हाँ दोस्तों, वर ऑलमोस्ट कमिंग टू द एंड। तो यू नो, इन द क्लोजिंग लाइक आई जस्ट से द सेम थिंग, राइट, कि हमारे बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं। आप यही सोच रहे होंगे कि 2 घंटे से पका रहा है, राइट, लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, राइट। यस, आई वुड से एब्सोल्युटली यू शुड, राइट, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जवाब ये है इसका कि बहुत से बच्चों के लिए यू नो इट्स नॉट द सेम ट्रैक वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्ली, कि भाई इसीलिए नहीं कि भाई आपको सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। कॉलेज एक टूल होना चाहिए, ट्रॉफी नहीं। एक डिग्री यू नो बच्चे की ज़िंदगी में, अगर उसको इट शुड हेल्प हिम, राइट, टू करियर, टू गेट अ करियर आउट ऑफ इट। ये वो नहीं कि 4 साल या 6 साल में आप कोई चले गए और बाद में लाइफ में डिटोर ही डिटोर लेते जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने डिग्री लेके आए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, या आपके मॉम या डैड ने कोई दूसरा रास्ता एक्सप्लोर ही नहीं किया, राइट। सबसे बड़ा बदलाव जो हम एज अ पेरेंट्स वी कैन डू, राइट, ये पूछना बंद करें कि भाई मेरा बच्चा क्या बनेगा एंड ऑल दीज थिंग्स, लाइक, और ये पूछना शुरू करें कि मेरा बच्चा किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता है, लाइक व्हाट इज हिज व्हाट इज व्हाट डज ही लाइक, व्हाट कैन ही डू, राइट। यू शुड बी एबल टू यू नो हैव सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग एंड हैव अ गेम प्लान अगेंस्ट इट, दैट हाउ यू वॉन्ट टू अचीव इट, राइट। इट इज़ नॉट द सेम कि भाई सबको एक ही ट्रेजेक्ट्री में डाल दो, इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर, वो एक प्ले बुक है, वो प्रीटी मच बहुत ही ब्लरी हो चुकी है इस टाइम पे, स्पेशली द टाइम्स, लाइफ एंड एवरीथिंग इज चेंज, राइट। सो हम अपने बच्चे को अमेरिका ले आए, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास यू नो ज़्यादा चॉइसेस हों। तो ये पक्का है कि हम सच में उन्हें वो ही चॉइसेस दे रहे हैं कि नहीं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक, और आर यू ट्राइंग टू प्ले देम इनटू द सेम प्ले बुक विच यू प्लेड अबाउट इट। तो यू नो थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि भाई देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, एंड द टाइम रन्स बाय प्रीटी क्विक। देखते ही देखते ही द चाइल्ड इज गोना बी फिनिशिंग अप द हाई स्कूल, द प्रेशर इज गोना बी इंक्रीजिंग, द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो ये डिग्री का और ये फॉर्मूला क्यों नहीं बदल रहा, और ये बदलेगा बिकॉज दिस इज एन ओल्ड थिंग। एक एक छोटा सा यू नो मोमेंट हुआ इसके ऊपर और द होल यू नो इंडस्ट्री इज गोना चेंज। सो टेक दिस सीरियसली, थिंक अबाउट इट, यू नो एंड थिंक इट इन अ डिफरेंट वे इफ यू कैन। वो पुरानी प्ले बुक चलाना इज़ नॉट ऑलवेज राइट। अगर कोई बच्चा, अगर कोई एच वैक या कुछ इलेक्ट्रिशियन या कुछ ऐसा या जनरल कौन कुछ भी कोई ट्रेड सीख रहा है, that doesn't mean that he cannot, he's not going to be successful in life, is what I wanted to have this show all about. Because I know a lot of people who are doing something beyond this computer engineering and all of that, and they're way, way, way, way, way much better than जो बंदा सवेरे बस्ता उठा के ऑफिस में जॉब कर रहा है और अपनी इनसिक्योरिटी में घूम रहा है और इतना लोन और डेट लेके चल रहा है। तो चलिए, आई होप यू एंजॉयड द शो। आप सुन रहे थे दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा। One more thing I want to talk about, कि आज है भजन जैमिंग and which is you know with Hookie Entertainment, 1140 Park Side Main Street पर कैरी में होने जा रहा है। This is going to be a pretty interesting भजन जैमिंग show on Janmashtami. Lots of singers. I think we have pretty much the full house and it's been you know organized by Radio Naira as well. So I will be there. You can buy your tickets on Eventbrite, but definitely join, enjoy कीजिए. Once again, Bhajan Clubbing with AG the DJ, Vaishnavi, Ravi, the whole Radio Naira team is going to be there. So please try to join and enjoy the show if you haven't purchased your tickets yet. Thank you all. आप तब तक के लिए गाने वाने सुनिए, enjoy कीजिए, and we'll meet you again next week.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Something big is about to happen at Hooky Entertainment. Feel the devotion, feel the energy. Immerse yourself in the trance of divine power.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. आए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोइट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ रैली में.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: हरे रामा।
2: ट्रायंगल, आर यू रेडी? फॉर द फर्स्ट टाइम इन रालीदुरम, रेडियो नायरा एंड चेरिश्ड मोमेंट्स प्राउडली प्रेजेंट भजन क्लबिंग, अ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल वेयर डिवोशन मीट्स द बीट एंड ब्रिंग्स जनरेशन टुगेदर। Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983. और ईमेल info@radionaira.com। भजन क्लबिंग, वन रिदम वन हार्ट वन डिवाइन सेलिब्रेशन।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।